0: ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: The Prime Minister highlighted that today Jind is emerging as a symbol of the good governance model of the BJP and the NDA. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress.
0: Aaj Jind BJP NDA ke sushasan model ki tasveer ban raha hai. Bite varshon mein pura Haryana hi विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया।